न पाया। ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए। त्रिग जीवै त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाए। तिन धुर मस्तक लिखिया लखास धन धन सत्संग सत्संगत जित हर रस पाया।

जमन काल सब लोग सुवारा नमस्कार है ताय हमारा। जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण पुजायो। आदि अंत कै अवतारा सोहे गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सगल प्रजा जने आप सुवारी। सिवकन को सब गुण सुख दियो छत्रन को पल मोहमत कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत।

की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उद कर करा कर तारा, प्रजा धरत तब दे अपारा। जब आकर्क करत हो कबहू, तुम मैं मिलत दे तर सबहू। जेते

इतनी सेवा प्रवान कर रही है, कीर्तन करते हैं, पुल्ला दी माफी बख्शन पाए सा कुलदीप सिंह जी दम टकसाल वाले आप जी कथा राही जोड़ दें तो सो प्यार से सरण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

कीती मेरी धी दा साक छड्या तुसा मेरा डर उक्का दिलो कड्या। सतगुरु सच्चे पातशाह नू चंदू चनाल कह रहा तुसी माड़ी कीती है मेरी बीती कीती है समाज दे विच चंगा नहीं कीता अजे भी मन जो बजो गे। सतगुरु कहन लगे कदाचित नहीं हो सकता इतिहासकार लिख दे ओदी धी सारी उम्र कुवारी रही ओदा किसते किसे ने रिश्ता नहीं लिया कोई ने तेस करके नहीं लिया भी ये गुरु महाराज दी मगेतर और कुछ ने आख्या भी ये छुट्टड़ा एदा रिश्ता नहीं लेना सारी उम्र ओ कुवारी रही। ए चंदू चनाल नू ए गुस्सा सी कहन लगा अजे भी मंजो नहीं तो देख वेख लो उबर रही आ ओ तानू गाल के सुट देगी। जेड़े काजी मलाने जिन्हां ने ए शिकायतां कीतियां बड़े खुश सन कल मैं जिन्हां दा जिक्र कीता पर जेड़ा भी गुरु अर्जन साहब ते चढ़ के आया सुबह ही खां ते सुली खां सुली खां महाराज नू चढ़ के आया पिथी चंद दे आखे लाके ओदा घोड़ा तरबकिया ते पठे बल दे विच ओदी मौत होई। सुबह ही खां आया ओदे पेट विच दर्द होई ओथे मारिया गया। जेड़ा भी गुरु महाराज ते चढ़ के आया जेड़े जदो गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बीड़ संपूर्ण की ना उस वेले पखीर काना पीलू छज्जू ते शाह सहन उन्हें आख्या महाराज साड़ी बाणी विच दर्ज कर दियो। जदों उन्हें बाणी अपनी बोली महाराज कह लगे भी ये बाणी जिहड़ी तुहाडी सिखी ते उत्ते एक सवटी ते पूरी नहीं तुलदी उन्हें आपो अपने बोल बोले पर सतगुरु ने किसी का एक अखर नहीं लिखा बाकी ते तीन सहार गए। एक बड़ा वड्डा अपने आप नूं फकीर खवाउंदा सी उहदा नां सी कान्हा उहने आख्या महाराज एडे हंकारी हो गए जे मेरा एक अखर नहीं लिखण दा तुसी मेरी दिब दृष्टि नूं नहीं जाणदे तुहानूं पता नहीं तुहाडी मौत जहांगीर दे हत्थों होणी आ। इतिहास विच जिक्र है इन्नी जो बंदगी वाला सी आउण वाले समें दा दस्सदा पर गुरु अर्जन साहब महाराज हस के कहन लगे ओए कान्हा साडा ते तू दसता अंत समा पर तू अपना भी अंतर ध्यान रखे वेखना भी तू लाहौर जाना कि नहीं जाना आ ते तू गया। ए बचन मारने सुभावक कर दिते जेड़े नाल दे ओ डरदे सी भी वाकई हुण असी लाहौर नहीं पहुंचना पर ओ जेड़ा कान्हा सी अपने सुआह जेड़े दसम द्वार चढ़ा लैंदा सी घोड़े ते बंदा दसम द्वार नहीं चढ़ा सकदा रथ उते चढ़ा सकदा ते रथ ते चढ़ के आए सी लाहौरों अमृतसर साहब। जदों रथ इन्हां लाहौर नू तोरी नाल दे तीन डरदे सी महाराज दे बचन संपूर्ण होणे आ पर उहने आके उहनू अपने मान सी मैं ते दसम द्वार सुआ गया मैनू कौन मारन वाला आंदे जदों लागे लाहौर दे गए इन्ना हनेर चलिया उह इन्ना तूफान आया ना ते कोई सवार नू दिखे ना कोई घोड़िया नू दिखे उह जिहड़ी रथ सी ਉਹ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਪਹੀਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਨੇ ਦਾ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਸ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਹੋਈ। ਚੰਦੂ ਚੰਡਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਚੰਦੂ ਚੰਡਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ के तत्ती लोत पाई गई आ लो दे थले मना मुई लकड़ा जालम डा रहे आ इधर जेठ दा महीना आपा ख्याल करिए अपने शरीर वाले गुरु के सिखो किन्ने साधना माड़ा जा कि गर्मी होए ना उस वे असी छड़दे आ पर धन गुरु अर्जन साहब महाराज इन्नी तपश पै रही आ उतों इधर शरीर छालो छाली होया ते तत्ती लो ते गुरु अर्जन साहब नू जिस तरह बिठाया एक एक बंद एक एक लैन कविता सुन वाली है बड़ी ए वरागमई कविता है किस तरह चंदू चंडाल पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज उत्ते जुल्म कर रहा उन्हां लैणां नू तुहाडे सामने जोड़ी इंज बयान कर रही है।

दर्शन प्यासे दिन सरात चितवो अनदिनीत खोल कपाट गुर मेलिया नानक हर संग मीत सो कहो टल गुरु सेविया एहन सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा बिन सतगुर सेवे जगत मुआ बिरथा जन्म गवाए।

मन मह चितवाओ चितवनी उद्यम करो उठ नीत हर कीर्तन का आहरो हर देहो नानक के मीत सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्तन।

काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधो खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुरपाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधो अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडाओत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हौ मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चल है चुभै दुख पाव है जमकाल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

भगत प्रगटाए, हर सिमरन लाग बेदि उपाए, हर सिमरन पहे सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच हुकुंट जाते। हर सिमरन धारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की सगल अकार, हर सिमरन मह

सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद्ध वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग बिड़

के अंतर जामी अपनी गद में जान हो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी युक्त तुम ते हो नान कबर न जान सुको सर्ब धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मर हिरिया सगल उद्यम मह उद्यम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जास सुन रसन बखानी

सचितारी जेह प्रसाद सुंदर रूप सो प्रभ सिमरहो सदा अनूप। जेह प्रसाद रे निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जेह प्रसाद तेरी पत रह गुरु प्रसाद नानक जस कह। जेह प्रसाद सुनहे करनाद जेह प्रसाद पेखे बिस्माद। जेह प्रसाद बोलहे अमृत रसना जेह प्रसाद सुख सहज मसना। जेह प्रसाद हत कर चल है जेह प्रसाद संपूर्ण फल है। जेह प्रसाद परम गत पावे जेह प्रसाद सुख सह समावे। ऐसा प्रभ त्याग बरकत लाघ गुर प्रसाद नानक मन जाग। जेह प्रसाद तू प्रगट संसार तेह प्रभ को मूल न बनो विसार। जेह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर तो ताग कव जाप। जेह प्रसाद तेरे कार्य पूरे ते सह जान मन सदा हजूरे। जेह प्रसाद तू पावे साज रे मन मेरे तू ता सिंहराज। जेह प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जापै जाप सोए।

कोवर सावे सा संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग सोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्वथान गम नानक साधक कै संग सफल जनम साधक संग नहीं कछ काल दर्शन भेटत होत निहाल साधक संग कलूहत हरे साधक संग नरक पर हरे साधक

उस्तद करहे अनेक जाने अंत न पार वार नान कृतना प्रावृति बहु विधि प्रकारस्पदी कई कोट होय पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पैतीथवासी कई कोट बन ब्रह्मदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धारह कई कोट कव का विचार है।

संग ज्यो जल मह जल आय कटाना द्यो ज्योति संग ज्यो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सत कुरबान सलोक सुखी बसे मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अस्तपदी जिस कै अंतर राज मान सो नरक पाती होवत सुहान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत

छूटै सहस खटै लाख कोठ धावै त्रिपत नावै माया पाछे पावै अनक भोग बिख्या के करे नह त्रिपतावे खब खब मरे बिना संतोख नहीं को राजे स्वपन मनोरथ ब्रिथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख हो बिड़भागी किसे प्राप्त हुए कर्ण कराम ने आपे आप सदा सदा नान कर जाप कर्ण करामन करने हार कह हाथ कहाँ विचार जैसी दृहत करे तैसा होए आपे आप आप प्रभु सोए जो किसकी नो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूं कै संग

सुनवाय सोदत सोदत सोदत सीजया गुर प्रसाद तत सब बूझया जब देखो तब सब कहे मूल नानक सो सूखम सोई अस्थूल नह कहे जन मै नह कहे मरे आपन चलत आप ही करे आवन जावन दृष्टन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सगल मह आपन के जुगत राच था पे उथाप अविनाशी नाही कज खंड अविनाशी नाही कज खंड धारण धार हो ब्रह्मांड

सो तुमीत कुटाम यर भरता इन ते कह तुम कमल सनाथा। राय रंग माया विस्तार इन ते कह कमल छुड़कार आस हती रथ सवारी।

मस्तक करम प्रभुपाद साध सरण नानक त्याय जे समान भसे सुने लाए प्रिय तेह जने आवे हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारे दुलाभ देह तत्काल उधारे निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माह समानी दुख रोग बिनसे पह परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सब ते ऊचता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

अहंकार असंख नाम असंख थाम अगम अगम असंख लोह असंख है सिर पार हो अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग बखाण जिन ए लिखे तिसर नाहे जि फुरमाए तिप तिप पाहे जेता कीता तेता नाहो विण नामै नाही को थाओ कुदरत गमन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भलीकार सदा सलामत निरंकार भरिया हथ पैर तन देहे पानी धोतै उतर सो खेहे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइयै ओ धोहे भरिया मत पापा कै संग ओ धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख रह जाहो आपे भी जापे ही खाहो नानक हुकमी आवो जाहो तीर तप दया दत दान जे को पावे तिलका मान सुनिया मन्या मन कीता भाव अंतर का तीर्थ मन लाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्ताद बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कमण सो वेला वखत कमण कमण थित कमण वार कमण से रुती माहो कमण जित हुआ आकार वेला

तेह अपेह अजीत है पीत है त्रिवान है निधान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अभूत है अपर्ण है अगंज है अभंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्भूज है सूज है अकाल है अजाल है अलाह है अजा है अनंत है महंत है अलीक है नरसरीक है नरलंब है असम है अगम है अजम है अभूत है अछूत है अलोक है अशोक है कर्म है परम है अजीत है पीत है अबाह है अगाह है अमान है निधान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रयात छंद नमो सर्वाने समस्ति निधाने नमो देव देवे अपेखी अभेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वभवणे अनंगी अनाथ नृसंगी परमाते नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीत नमो तान ताने नमो दृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रभंगी परमाते समस्ती विभूते कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वर परम रूपे नमो जोग जोगेश्वर परम सिद्धे नमो राज राजेश्वर परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमी अभोगी अभुगते नमो जोग जोगे स्वर्ण परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अभरे देव सुतर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहंग नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग सनाने नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र यंत्र नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सच्चिदानंद सर्वंग प्रणाशी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धा बुद्धा बृहदकर्ता अद उर्द अर्दंग अगंग ओग हर्ता परंग परंग परमेश्वरंग प्रोषपालंग सदा सर्वदा से दाता दयालंग अशेदीय भेदीय नामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्त तामंग तेरा जोर चाचरी छंद जले है थले है पीत है पेह प्रभु है अजू है अदेश है वैसे भुजंग प्रयाद छंद अगाधे अबाधे अनंदी सुरभे नमो सर्वाने समस्ति निधाने नमस्वंग नृनाथे नमस्वंग परमाथे नमस्वंग अगंजे नमस्तमंग पंजे नमस्तमंग काले नमस्तमंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वेशे नमो राज राजे नमो साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृसंग नमो सर्वकृत्संग नमो सर्वरंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजय समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सदा सर्वदा हृदसिद्धं निवासी चरपट छंद त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अल्लाह कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग तरानंग सर्वं भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग भेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल छंद त्वा प्रसाद आदरूपनाथ मूर्त अजोन पुरखा पार सर्पाल सर्मांतरमान देव आदरूपनाथ मूर्त अजोन पुरखा पार सर्मांतरमान देव अभेव अभेव आद उदाहर सर्पालक सर्वकालक सर्वगोपन काल जतर ततर विराज हूद्रभ साल नाम ठामना जात जागरूप रंगना रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद अशेख देश और ना पेह जागरूप रेखना राग जतर ततर दिशा विशा फैल अनुराग नाम काम विहीन पेख ताम न जाय सर्वान सर्वत्र मान सदा मानता है

आजान बाहुशाहान शाहु राजान राजपानान पान देवान देवा महान इंद्रानंद्रबालान बारंगारंकालान कालान भूतंग आभा भंगत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निगम अद्वित प्रचंडमित गत अखंड आलस्य कर्मा दृश्य धर्म सर्वापर नाड्य आन दंड बाड्य चाचरी शांत त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकर इंद्र नामे अगामे भुजंग ब्रयाद छंद चतुर्चक्र कर्ता चतुर्चक्र हर्ता चतुर्चक्र दाने चतुर्चक्र जाने चतुर्चक्र वर्ती चतुर्चक्र वर्ती चतुर्चक्र पाले चतुर्चक्र गाले चतुर्चक्र पासे चतुर्चक्र वासे चतुर्चक्र मान्या चतुर्चक्र दान्या चाचरी शन न सत्र न मित्र न परम न पितर न कर्म न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिश्य अधिश्य अदृश्य अग्रसा

अनुगात अमरंजात अंटुटमंड आर अंठट अपार आ रीर सरम अत ठीठ कर्म अनवरण आनंदाता महंतर बोल मना शांद त्व प्रसाद करुणाल अर्काल कलखंडन है महमंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कलकारण है सर्वबारण है तृतगय तरण है जगे कर्ण है मन मान है जग जान है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वास है सर्वनाश है करुणाकर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है आ जप जप अथप थप अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणाकृत है कर्ता कृत है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है कर्ता कृत है अमृता मृत है आजवा कृत है अमृता आमृत है नरनायक है खलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पपंजन है अरगंजन है रपतापन है जप जापन है कलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है अर्ता है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जासके जासे भुजांग ब्रियाद छंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग तामसंग सांद्रूपे नमो परम दत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्यान नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञान भोज भोजे नमो बान भाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रिय नादंग विभुते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो भांग भंगे अभंगी स्वरूपे अरंगी नामेत्र भंगी त्रगाले अरंगी अघामे एक श्री शांत अजाय अलाय अपय अभय अपू अजू अनास आकाश अगंज अभंज अलख अपाख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगह अटा अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नरागे नरंगे नारूपे नरेखे अकर्मंग अपरम अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाद छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निर्गामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमुल कनिंदा समस्तल निवासी अजाय विभूते गजाय गरिमे हरियंग करियंग करीमल रहीमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुगारंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं

पूर्ण हुए हमारी आशा तोर भजन की रहे व्यासा। तुम्हें शाड कोई अपरना त्या हूं, जो पर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन शत्रु हमारे मारिया है। आप हाद मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रासन भरिया है। वो जो सदा हमारे पच्छा, श्री सुजू करे हो रक्षा। राख लियो मोय राखण हारे,

कौन सिमट भयो संकर एकैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आदि जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संगरो दुष्ट जते उठवा तुत पाता सकल मलेश करो रणगाता जी अस्तुता शरणी।

सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दुष्टन जाय ने हर हऊ, ताके ताप तनक मैं हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट छा शवय।

अगर मैं आहार पहुंचावे ओस नूं किहो पोहे ना सकी जिसनों आपनी लिब लावे आपनी लिब आपे लाए गुरमुख सदा संभालिया कह नानक केवड़दाता सुख मनो विसारिया जैसी अगर उधर बह तैसी बाहर माया माया अगन सब एको जही करता है खेल रचाया जात सभाणा था जमया परिवार भला पाया लिब छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया कह नान गुर प्रसादी जिन्ना लिब लागी तिन्नी विचे माया पाया हर आप अमलक है मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसे बिटो रहे लोक बिल लाए ऐसा सतगुरु जे मिला तिसन सिर सौंपिया है विचों आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहा है हर बसे मन आए हर आप अमलक है भागत ना के नानका जिन हर पल्ले पाए हर रास मेरी मन मन जारा हर रास मेरी मन मन जारा सतगुरु ते राज जानी हर हर रित जपियो जियो लाह खटियो दिहाड़ी यो तन तिना मिलिया जिन हर आपे भाणा कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ बंजारा ए रसना तू अंदर सराच रही तेरी प्यास ना जाए प्यास ना जाए होर त किता जिचर हर रस पल्ले ना पाए हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागे आए ये हरस करमी पाइय सतगुर मिले जिस आए कहे नानक होर आन रस सब भी सरे जा हर वसै मन आए ये शरीरा मेरे हर तुम मैं ज्योत रखी तातू जग में आया हर ज्योत रखी तुद विच तातू जग में आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जग दिखाया गुर प्रसादी बुझया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कहे नानक शिष्ट का मूह रचया ज्योत राखी तातू जग में आया मन चाओ प्या प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया हर गाओ मंगल सखिए सोग दुख ना व्यापय गुर चरण लागे दिन सभागे आ

साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूर जी बैठी साध संगत जी वड़पागी हो आप जी अमृत वेले दवाना च हाजरियां भर रहे हो। अमृत वेले तो ही गुरु घर विखे जुड़ के सब तो प्रथम परम संगति रूप नाम जप के उपरंत गुरु पातशाह जी ने सोने तख्त विराज मनो के दर्शनदारे बख्शिश किए पितर हुक्म बख्शिश किए सन। उपरंत गुरु महाराज की हजूरी में सुखमनी साहब जी के पाठ पंजा बाणियों के नितनेम होए हैं। आउन श्री आसा की वार दे शब्द कीर्तन सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के हजूरी रागी पासे भाई सरबजीत सिंह जी लाडी उन्हों का कीर्तनी जथा आप जी आसा वार के कीर्तन राही जोड़न गए उन्होंने पासों प्यार सरवण करो जी। जून 1984 के घलोकार समूह शहीदों की यादा में सारा हफ्ता ही शहीद हफ्ता मनाया जा रहा है। शाम के विशेष दीवान साज रहे हैं आप जी ने हाजरी भरनी है जी। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के शहीदी प्रभाव के संबंध में जून 1984 के घलोघर के समूह शहीदों की यादा में आने वाले शनिवार को सैन फ्रांसिस्को विखे नगर कीर्तन हर साल की तरह पातशाही रैली निकल रही है। आप जी ने परिवार सहित हाजरी भरनी है जी। आओ हम कीर्तन जुड़ना करो। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

मन अपने सुचे छुट्टे तिल गुआर जियो संजय अंदर खे खेत अंदर छुट्टिया को नानक सोना फलिए फुलिए पपड़े।

0: वड़ी वड़े जवड़ा लाओ वड़ी वड़े जस सच ले आओ वड़ी वड़े जने चलताओ वड़ी वड़ी जाने लाओ वड़ी वड़े बुझे सब पाओ वड़ी वड़े जब पुछना दात वड़ी वड़े जाया पिया नानका नगती जाए की ताकरना सर्व जाए महला दूजा
1: एहो जग सच्चा की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्मे करे विनाश एक ना पाड़े कट ले एक ना

0: स्वाद जो है, स्वाद को तो स्वाद भोग, स्वाद सिर्फ स्वाद सलाह, स्वाद उजड़ स्वाद रहा, स्वाद नेड़ स्वाद, स्वाद में के हाज रहा जो वे कुड़ा दिया स्वाद, नानक भजन पूरे पाप भला पहला।
1: कुदरत सह कुदरत सुने कुदरत पाओ सुख सार।

सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन भाव देरा भीड़े के जावना नंगा तो चकटा लिया तद से खरा डरावना कर ओगन पछोतावना कर ओगन पछोतावना।

एक नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वडे आईया आपे ही कर्म कराएंदा वडो वडा वड मेदनी सिर सिर धंधे लाएंदा नु रुपठी जे कर सुल्ताना काउ कराएंदा दर मंगर फेक ना पाएदा दर मंगर फेक ना पाएदा।

प्रबंध का आपसे लड़ पे। प्रबंधकों की किसी गल तो आपसे नोक झोक हो गई, पग्गां लह गई, लड़ाई बहुत हुई। मसकीन जी बड़े खफा होए, कहण लगे कि कथा का आ फल मिले, आडे ते असर होया कि तुसीं पग्गां ला रही आपसे कि लड़ाई झगड़ा किया। मसकीन जी कहिंदे कि उस वेले कथा सुन रहे सी संत बाबा बलवंत सिंह जी, बाबे कुली वाले, ते मैनूं कहण लगे मसकीन जी ये तो लड़ाई कुछ भी नहीं, इत्थे जंग होनी, इन्नी ज्यादा इन्ना ज्यादा खून खराबा होएगा, उहदे च तूं ही फसेगा, जंग होनी है, एडी भयानक जंग होवेगी कि हजारां लोग जिहड़े मारे जाणगे। ते कहिंदे याद रखी तूं ही उहदे च फसेगा। मसकीन जी कहिंदे मैं उदों हैरान होया कि कहिंदे उह गल होई, कहिंदे मैं भी कुदरती आया सी ते जंग चली तो उहदे विच मैं भी फसिया। मतलब यह लिखत होंगे वाहेगुरु दियां, परमात्मा की खेड होंगी प्यारे हो। जो किश करे सो आपे स्वामी, जो किश करता है वह मालक वाहेगुरु आप ही करता। हर आपे कार कमावै, हरी जी वाहेगुरु जी हरेक काम आप ही करवा रहा, हरेक जीव के अंदर बैठा वेखना बोलना तुरना फिरना यह वाहेगुरु की रजा, वो रजा च हो रहा भाई। हर आपे ही मत देव स्वामी, श्री गुरु रामदास साहिब जी मेहर करते ने वो मालक वाहेगुरु आप ही श्रेष्ठ मत दिता है। जिदे ते परमात्मा मेहर करे श्रेष्ठ मत दे दिता, तो जिते वो करोपी हो जाए खुश लै चंगयाई उतो मत परमात्मा जिहड़ा है वो मत मार दिता तो चंगयाई खो लैंदा वाहेगुरु। सो साडे लीडरां दी जे सत्संगी वेखीए उस समय जिहड़े धार्मिक लीडर सी, इन्ना करदार उन्हां दा नीवां सी, इन्ना गिरिया होया करदार सी, भावें जालम फौजी चढ़ के आए सी, ते नेक बंदे भी चंगे इंसान भी हुंदे प्यारे हो। ते समय दी सरकार ने इन्हां नूं बचाउण लई लीडरां नूं कुछ अफसर भेजे, आदर्श शर्मा लैफ्टिनेंट जनरल उहनूं भेजिआ। उहदी नैट ते पई हुई वीडियो है, कहिंदा जदों असीं गए ते इह सारे लोग बैठे सी अंदर अपने कमरियां दे च, तेजस्वी समुंदरी हाल दे विच। कहिंदे लौंगोवाल ने मैनूं कहा कि उह मर गया कि हैगा जे, वेखो इहनां दे काम भाव कि उहदा भाव संत भिंडरांवाले, उह मर गया कि हैगा जे। फिर कहिंदा कि मैं तुहाडे नाल कल्लिआं नाल गल करना चाहुंदा। लौंगोवाल भी टोड़ा भी दोनों ने कहिंदा यही गल कही, वह मर गया कहेगा जे। इन्हां दा यही सी कि एक गलों लवे मरे ते साड़ी जिहड़ी राजगद्दी कायम रहे, जे ये रह गया तो सारे ही सेखे दे नाल जुड़ जाने, तो असीं ते गए राजनीति विच भी गए ते धार्मिक खेत्र विच भी गए। इन्हां ने ही इशारे कर करके इंदरा नूं ते हमला करन लई प्रेरिया। वह डरदी सी बामणी, उहदे च इन्नी हिम्मत नहीं सी प्यारे हो कि खालसे ने टक्कर लै लवे। इन्हां ने उकसाया, इन्हां वार वार चिट्ठियां कीतियां लिखियां, वार वार फोन ते गलबात कीती, वार वार इन्हां ने उहनूं उकसाया कि तू हमला कर ते कढ। इन्हां नूं मतलब नहीं कोई दरबार साहिब टह जाए, अकाल तख्त टह जाए, संगतां शहीद हो जाण, कुछ हो जाए, इन्हां नूं ते अपनी राजगद्दी चाहीदी है। ध्यान सिंह डोगरा अपने पुत नूं राजा वेखना चाहुंदा सी, सिख भावें सारे मर जाण प्यारिओ, इन्हां दी ऐसी हिसरत सी। उह दसदे ने अफसर कहिंदे कि असीं अंदर गए, इन्हां ने मंगां की रखियां, कहिंदे कि सानूं पाणी दी पाणी पियाओ, सानूं पाणी दी घाट है, फिर सानूं कढो इत्थों, कौम मर रही है, बच्चे मर रहे ने, बीबियां भैणां संगतां शहीद हो रहीआं, दुष्टो तुसीं तुहानूं अपनी फिक्र पई कि सानूं बाहर लै जाओ, छेती लै जाओ, कोई सानूं मार ना देवे। सरकार ने अपनी सुरक्षा दे विच इन्हां नूं बाहर कढ़िया, मतलब कि ऐसी इन्हां दी सोच सत्संगी हो, मत मार दिंदा वाहेगुरू। सियाणे कहिंदे ने कि परमात्मा ना लत्त मारे ना कसुन मारे, जदों मारे सत्संगी हो, ना लत्त मारे ना कसुन, ते जदों मारदा मत ही मारदा। ਇਹ ਮਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾ ਕਿੱਥੇ

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए।

अंत न पावत देव सब मुन इंद्र महासेव जो करी हुन वेद ब्रंच विचार रहे हो हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्टि निहाल करी रामदास गुरु जगतारन को

उठ चल सह प्रभात, क्या तू रता ग्रस्त स्यों सा फुल्ला की बागात। मेरी मेरी क्या कर है जिन दिया सो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़।

सो के बढ़ा थाओ। अंबड़ कोई न सकई हों किसनो पुछन जाओ, बरन बरन ना भावनी जे किस बड़ा करे, बड़े हथ बड़ियाइया जै भावै तै दे। हुक्म सवारे आपने चसा न ढिल करे, सबको आखे बहुत बहुत लैणा कै विचार, केवड़ दाता आखिया दे कै रहे समार। नानक तोट न आवई तेरे जुगे जुगे भंडार, महला पहला सब एकांत महेलिया सगलियां करे सिगार। गणत गनावण आईया सुहावे स्वीकार, पाखंड प्रेम न पाईया खोटा पाज खुआर। हर जियो इउ पिर रावै नार, तुद भावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार। रहाओ गुर सबदी सिगारिया तन मन पिरकै पास, दोए कर जोड़ खड़ी तकै सच कह अरदास। लाल रती सच भै बसी भाए रती रंग रास, प्रे की चेरी कांडी है लाली मन नाओ। साचे प्रीत न टुटई साचे मेल मिलाओ, शब्द रती मन भेदया हौ सद बलहार जाओ।

पाए। गुर राखे से उबरे साचे स्यों लिवलाए। हर जियो शब्द पछाणिया सच रते गुरवाक। तित तन मैल न लग गई सच कर जिस ओताक। नदर करे सच पाइय बिन ना वै क्या साक। जिन्ने सच पछाणिया से सुखिए जुग चार। हो मैं तृष्णा मार कै सच रखिया और तार। जग मै लाहा एक नाम पाइया गुर विचार। सचो बखर लादिया लाभ सदा सच रास। साची दरगा बै सही भगत सची अरदास। परसों लेखा निबड़ै राम नाम प्रगास। ऊंचा ऊंचा आखिया कहो न देखिया जाए। जह देखा तै एक तू सतगुरु दिया दिखाए। जोत निरंतर जानिए नानक सहज सुभाए। श्री राग महला पहला।

अवगुण त्याग समाई जाए गुरमत पूरा सोए रहाओ बिन रासी बापारिया तके कुंडा चार मूल न बुझै अपना बस्त रही घर वार बिन बखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ यार लाहा एन सनौतना परखे रतन विचार बस्त लह करे अपने चलै कार जसार वण जा रहा स्यों वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संतां संगत पाई है जे मेले मेलनहार मिलिया होए न बिछड़ै जिस अंतर जोत अपार सच्चा आसन सच रहै सच्चा प्रेम प्यार जिन्ने आप पछाणिया घर मह मैल सुथाए सच्चे सेती रत्या सचो पल्लै पाए तेरे भवन सो प्रभ जानिया सचो साचा नाहे सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग महली महल बलाइया सो पिर रावे रंग सच सुहागण सा भली पिर मोही गुण संग भूली भूली थल चढ़ा थल चढ़ डूगर जाओ बन मैं भूली जे फिरा बिन गुर बूझ न पाओ नाभ हो भूली जे फिरा फिर फरियाब हो जाओ पुछो जाए पधाऊआ चले चाकर होए राजन जाने अपना दर घर ठाक न होए नानक को रब रहया दूजा अवर न कोए श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन बसा

नाम बसारिया अवगुण मुठी रोई। खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए, आप पछाणे घर बसै होमे तृष्णा जाए। नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए, श्री राग महला पहला।

हरनाले साचे साहेबा क्या नहीं करते रह करता तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सुर सता सला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्य आवाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रह साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जन पुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए बसया जन इच्छा सब पुजाइया

आपे धरती साजन प्यारा पिछे टंग चढ़ाया मेरे मन हर हर त्याए सुख पाया हर हर नाम निदान है प्यारा गुरपुरे मीठा लाया रहा आपे धरती आप जल प्यारा आपे करे कराया आपे हुक्म वर्तदा प्यारा

आन सुवाल रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन का विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार

गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। सोदा राग आसा महला पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद। सो दर तेरा केहा सो कर केहा, जित बै सर्व संभाले वाजे तेरे नाद अनेक असंखा। किते तेरे वावन हारे किते तेरे राग परी सों कही आए, किते तेरे गावन हारे। गावन तुदनो पवन पाणी बै संतर, गावे राजा धर्म दुआरे। गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन, लिख लिख धर्म बिचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्या दरनाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध बिचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन, सुरग माछ प्याले। गावन तुदनो रत्ने उपाए तेरे अड़सड़ तीर्थ नाले। गावन तुदनो जोधमा बलसूरा, गावन तुदनो खाणी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे। सही तुदनो गावन जो तुद भावन, रते तेरे भगत रसाले। होर केते तुदनो गावन से मैं चेतन आवन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है। पी होसी जाए ना जासी, रचना जी नरचाई। रंगी रंगी पाती कर कर, जिनसी माया जिन उपाई। कर कर देख कीता अपना, ज्यो तिस दी वडियाई। जो तिस भावे सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई। सो पात साहो साह पात साहिब, नानक रह नर जाई। आसा महला पहला सुन वड्डा, आखे सब कोय केवड़ वड्डा डीठा होए।

पवै। तिस दाते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल। देहो सजन आसीसड़िया ज्यों होवे साहब स्यो मेल। घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन। सदनहारा सिमरिया नानक से दयावान। आगासा महला पहला छे घर छे गोरा छे उपदेश। कर कर एक गुर गोरे को वे सनेक। बाबा जय कर करते कीर्त होए। सो घर रख वडाई तोय रहा विसै सिया कड़िया पैरा। तिथि वारी माँ हुआ सूरज को रोते अनेक। नानक करते के केते वेस। राग तनासरी माला पहला गगन में थाल राव। चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। धूप माल्या लो पवन चवरो करे सुगल बनुराए। फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना। तेरी आरती अनाहता सो द्वा जंत भेरी रहा। सहस ताव नैन नैन नैन है तोहे को। सहस मूर्त न नायक तोही। सहस पद बिमल नानिक पद गंध बिन। सहस ताव गांधे विचलत मोही। सब मैं जोत जोत है सोए तिस दय चानन। सब मैं चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए। जोत सुभावे सो आरती होए। हर चरण कमल मुकुर आंद लोभे तुम मनवाण दनुम आई प्यासा। कृपा जल दे नानुसारं कोय जाते तेरे नाय वासारा। गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहो भरिया मिल साधु खंडल खंडा। ए पूर्व लिखत लिखे गुर पाया। मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है।

लक्ष्म प्रीत मिलाप बिन संगत साधना त्रापिया बिना में दुख संताप हर जाप जीर छुटी है गुरमुख जी ने आप तन मन गुरु पे बेच अमन दिया सरनाल त्रिपवन खोज टंडो लिया गुरमुख खोज निहाल सतगुरु मेल मिलाया नानक सो प्रवनाल श्री राग महला पहला मरने की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस तू सर्व जिया प्रतपाल ही लेख सा गिरास अंतर गुरमुख तू वस ज्यो पावे त्यों निरदास जिया रहे राम जोत मन मान अंतर लागे जल बुझे पाया गुरु ज्ञान राव अंतर के गत जानिए गुरु मिलिए संकेतार मोया जत कर जाइए तत जिम दया मर मार अनहद शब्द सुहावने पाइए गुरु विचार अनहद

हे नानक सतगुरु मेधकर सच पावै दरगाह जाए श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाइए तुल्य पूरै तोल कीमत किन न पाइय रद माणक मोल अमोल पाई रे हर हीरा गुरमाहे सतसंगत सगुरु पाइये अनस शब्द सलाह राहो सच वखर तन रास लै पाइए गुर प्रगास ज्यो अग्न मर जल पाइए त्यो त्रस नास दास जम जंदार न लगे यो पौजल तर तरास गुरम कूड़ न पावे सच रत सच पाए स्वागत सच न पावे कूड़ कूड़ी पाए सच रत गुर मिलिये सच सच समाये मर में माणक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर तन नाम है कड़ कड़ गैर गंभीर नानक गुरमुख पाइए दया करे हर हीर श्री राग महला पहला परमे पाए न विजवे जय पवे दसंतर देश अंतर मैल ना उतरे त्रग जीवन त्रग वेश होर किता भगत ना हो वै बिन सतगुर के उपदेश मन रे गुरमुख अगन निवार गुर का कहया मन वसे हम तृष्णा मार रहाओ मन माणक निर्मोल है राम नाम पत पाए मेरे सत्संग तर पाइए गुरमुख कर लिवलाए आप गया सुख पाया मिल सलल सरल समाये जिन हर नाम न चेत्यो से अवगुण आव जाए जिन सगुर पुरख न पेट्यो सो भौजल पचे पचाए एहो माणक जियो निर्मोल है कौटी बदले जाए जिन गुरमुख जिन्ना सतगुरु रस मिले से पूरे पुरख सुजान गुरु मिल पौ जल रंगे दरगा पात परवान नानक ते मुख जले तुन उपजे शब्द निछाण श्री राग महला पहला बणज करो बणजारियो वखलो समाल तैसी वसु साई जैसी निवह नाल अगे सासु जान है लैसी वस समाल पाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर लै चलो सो देखे पति आय राव जना रास ना सच है क्यों ते ना सुख होए

नर गुरु दर्शन न होए। खोटे जात न पाते खोट न सिजर कोए, खोटे खोट कमावना गया पात खोए। नानक मन समझाइए गुर के सब सलाह, राम नाम रंग रत्या पार न परम तेना। हर जपला अगला निरपव हर मन मा, श्री राग महला पहला कर दूजा तन जो बनियाल फुल डा। नाठियाड़े दिन चार्यू

सुत जीराण हपे बंजा डोबणी रोवाचिणी बाण की न सुनाय गोरी है अपन कन्नी सोय लगी आवे सो रैब नित न पैया होय नानक सुती पे ये जान विरति सन गुणा गवाई गंठड़ी अवगण चली बन श्री राग मोहला पहला कार दूजा दूजा आपे रसिया आप रस आपे रावण हार आपे होवे चोलड़ा आपे सेज पतार रंग रत्ता मेरा साहेब रब रहा पर पूर रहो आपे माछी माछले आपे पानी जाल आपे जाल मन कड़ाए आपे अंदर लाल आपे बहुत रंगला सके मेरा लाल नेत्र वै सुहागन देखा मारा हाल परुण है नानक बेनती तू सरवर तू हंस कौल तू है कविया तू है आपे वेख विकास श्री राग महला पहला करति जाए तन धरती बीज कर्मा करो सरल पाव सारंग पानी मन के रसान हर हृदय जमाए लयो पाव सपद निर्वाणी काहे गर्भ सुमुड़े माया पित सुत सगल काल तर माता तेरे होय नांत स खाय राव बिखे बिकार दुष्ट गिरखा करे न तज आत्म होय त्याई जप तब संजम होय जब राखे कमल बिकस माते असर माई बिसप तारो बासुरो संग्रह तिन खोड़ा नित काल सार दस अठार मैं परम्परो चिन्ह कह नानक एव एक तार श्री राग महला पहला करती जा अमल कर धरती बीज शब्दो कर सद की आवनत दे पानी हो कर सान मान जमाय लापे सुत दो जक मुड़े बजानी मत जान सगली पाया मालक मन रुख सुबायत विधि जन्म गवाया रहाओ ऐव तन चिकड़ोए मन मीड़ को कमल के सार नहीं मुल पाई पर नित पाख्या बोले क्यों बुझाए जान न बुझाई आखण सुनना पौन की बाणी ये मन रत्ता माया खसम की नजर दिले पसंद है जिन कर एक ते आया थी कर रखे पांच कर साथी नाव सतान मत कट जाई नानका खेरा पे चलना मालक तन कित को संजे आई श्री राग महला पहला कर चौथा सोई मौला जन जग मौलिया हरिया किया संसारो

आरराव मखनेन्दाय आकादिनराल परकर चोहिरी जोहिनी चनार कांक्रो तनवसे चंडाल तान गुरु प्रहाकरतार फाही सुरत मलुकी वेश ठगवाड़ा ठगी देश खरास

सत्यद्रवारो अमृत पीमे सदा सदा सत्य नाम पे आर पाए रे गुरु सदा पद हो हर हर सदा त्याय मरो में कड तो हे राव मान मुख नाम न जाने बिना में पात जाय शब्द साधना आयो लागे दूजे पाए विष्णा के कीड़े पवे चो विच विष्णा से विष्णा माय सुमाए तिनका जन्म सफला जो चलने सगुरु पाए कोलो धारा अपना कोलो आधार है अपना तन जने दी माए हर हर नाम त्याई है जसन कृपा करे रदाय जिन गुरमुख नाम त्याया विचों आप गवाए ओए अंदरों बारो निर्मल सच्चे सच सुभाए नानक ऐसे परवान है जिन गुरमति हर त्याय श्री राग महला तीजा हर भगता हर तन रास है गुरु पूछ करे व्यापार हर नाम सलाहन सदा सदा वखरा नाम आधार गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया हर भगता तुट भंडार पाई रे सुमन को समझाए ए मन आलस क्या करें गुरमुख नाम से आए राहो हर भगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार पाखंड भगत ना होवे दुविधा बोल खुआर सो जन रलाया ना रल जिस अंतर पवे एक विचार सो सेव करे आखिए जो हर राखे उतारे

जाए। लक्ष राशि तरस दे जस मेले सो मिले हरे आए। नानक गुरमु कर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा सुख सागर हर नाम है गुरु पाया जाए। अंधे नाम त्याए सज नाम समाए। अंदर रचे हर सहस्य रसनार गुण गाए। पाई रे जग दुखिया दूजे पाए। गुरु सुनाए सुख लाए अंधे नाम त्याए। राव साचे मैल न लगे मंदिर मल हर त्याए। गुरुमुख सबद पछाणी आरम

बेन गुरु मैल न पाए नाम न प्राप्त होए अच्छा सतगुरु लोड़ लो जे तू पाए सच सोए असर संगार है सुख वसै जो तु पावे सोए देहा सतगुर कर जाने ते हो देहा सुख होए हो सह समूले नाई पाओ लाए जन कोए नानक एक ज्योत दोए मूर्ति सद मिलावा होए श्री राग महला तीजा अमृत छोड़ भी ख्यालो बाण सेवा करे भी डाड़े अपना धर्म गवा में बुझे नाही आंदन दुख बयाने मन मुखे आंदन चेत डो मोए बिन पानी मन रे सदा पजो हर शरणाई गुरु का शब्द अंतर वसा ता हर विसरना जाई रावे म शरीर माया का बतलाव जाऊं मैं दृष्टि पाई आवण जाना जमण मरना मन मग पत गवाई सगुर सेव सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मिलाई सगुर की सेवा तसो खाली जो इच्छे सो फल पाए जात सत तप पवित्र शरीर हर हर मन वसाए सदानंद रह दिन राति मेरे प्रीतम सुख पाए जो सतगुरु की शरण आगते हों तेन कह बल जाओ दर सचे सची वड्याई सह जय सच समाओ नानक नदरी पाई गुरु कमेल मिलाओ श्री राग महला तेजा मन कर्म कमावने जो दोहा गंतन सिगार सेजे कंत नावे नितन तो खुआर बिरका मैल न पावे न दिथे करबार पाई रे एक मन नाम से आए संता संगत मिल रहे जाप राम नाम सुख पाए राव गुरमत सदा सुहागणी पर राख और तार मिठा बोले निव चले से देर में पतार सुभावंती सुहागणी जिन गुर का हेते अपारे पूरे पास सत गुरु मिले जा भागे का उदो होए अंतर दुख प्रम कटिए सुख प्राप्त होए

समाल नाम रत सुंदर बलय गुरु कैसा स्वभाव मन तन राता रंग सिंह रसना रसन रसाए नानक रंग ना उतरे जो हर तुर छोड़िया लाए श्री राग महला तीजा

राव जिन्ने चाख्या तिने साध पाया बिन चाखे परम पुलाय अमृत साचा नाम है कहना कछु न जाए पिव तू प्रवान पया पूरे शब्द समाये आपे देता पाइये और करना किथु न जाए देवण वाले के हथ दात है गुरु द्वारे पाए देहा कि तुंते आओ आजे है कर्म कमाए जात सत संजम नाम है बिन नाम है निर्मल ना होए पूरे पाग ना मन उसे सबन मिलावा होए नानक सजे ही रंग वर्तदा हर गुण पावाए सोए श्री राग महला तीजा काया साध दैवताप करे बिचो मैं ना जाय अध्यात्म कर्म जे करे नाम ने कभी पाए गुर के सब जीवित मर हर नाम वसे मन आए सुन मन मेरे पास सतगुरु शरणा गुर प्रसादी छुटी है बिग भाव शब्द गुर तरना राव त्रै गुण सभा ताता दूजा भाव विकार पंडित पड़े बंधन मोह बादान बूझै बिख्या प्यार सतगुरु मिलिया त्रिकुटी छोटा है चौथे पद मुक्त द्वार गुरते मार्ग पाइए चुके मोह गुबार सद मरे मरे थाई उदरे पाए मुख द्वार गुर प्रसादी मिल रहे सच नाम करता रे मनवात सबल छड़ना कित पाए दूजे पाए दुख लाइंदा बहुत ही दे सदाय नानक नाम लगे से उभरे मैं शब्द गवाए श्री राग महला तीजा कृपा करे गुरु पाई हर नामो दे दृढ़ाए बिन गुर के ना पायो बिरथा जन्म गवाए मन कर्म को मावने दरगा मिले सदाए मधुर दूजा पाओ चुकाए

हार निर्मल सदा सोना सब सुवर्ण हार राव सच्चे शब्द मन मोहिया प्रव्यापे ले मिलाय अंधे नामे रत्या ज्योति ज्योत समाय ज्योति प्रभ जावदा बिन सदगुरु भोजना पाए जिनको पूर्व लिखिया सदगुरु भेटिया तन आय बिन नाम सब डूमणी दूजे पाए खुआए तिस बिन कड़ी ना जीवदी दुखी रहन बिहाए।

हरे को दाता व्रत दादु जावन को ए सब सलाहे मनमस सह सुख हो सब नदरी अंदर वेखता जपा वैसा दे हो मैं सभा गणता गणता नौ सुख नाहे बिकी कर कमा।

मन मुख मैल ना उतरे जितर गुरु शब्द ना करे प्यार मन मेरे सगुर के भाणे चल निज कर वसै अमृत पीवे ता सुख लहै महल राव।

तिदा आपे कारण करता करे सत देखे आप पाए सब एको एक वर्त दा लख न लख्या जाए।

पाया सत समाय से संयासो अग्नि जन कहो नजर करे खसम बछाने अपना तन मन आगे दे कार बार पाया अपना मैं दूर करे नानक शोभा बंती आसो अग्नि अंदर भगत करे श्री राग महला तीजा

मन के विकार मन तजे मन चुके मोह अभिमान आत्म राम पहचाने सहज नाम समान बिन सतगुर मुक्त न पाये मन फिरे दीवान।

जाओ सके संसार। गुरु मते सुख पाइए सतनाम उतार, जिसनो मिले सो मिले हो ते सब लियारे जाओ, मन भगति रतिया सत।

जय पचात न सजना प्रभ के तिर मिलय मिलाये मेरे सदगुरा मैं तुझने वरना खोए हम मूर्ख मुगल शरणागति कर कृपा मिले हर सोए राव सतगुरु दाता हर नाम का प्रभा मिला वै सोए सतगुरु हर प्रभु जया गुरु देवड़े वरना खोए गुरु शरणाई टपवा कर दया मिले प्रभ सोए मन हट कि न पाया करो पाव थके सब को ऐसा श्याण कर रहे मन को रंग न होए कूड़।

सतगुर दिया दिखाए। जो निरंतर जानिए नानक सह सुभाए। श्री राग महला पहला। मछली जाल न जानिया सर खारा सगाओ, अत सियाणी सोहनी क्यों की तो वेसाओ। कीते कारण पाकड़ी काल न टले सराओ, भाई रे ओ सिर जानो काल। जो मछी त्यो मानसा पवे अचिंता जाल राओ। सब जग बाधो काल को बिन गुर काल अपार, सच रते सि उबरे दुबदा छुड़ विकार। आओ तिन कहे बलहारण दर सचे सचे आर, चन ज्यो पंखिया बाली जाली बदक हाथ। गुराखे सिबरे और फाथे जुगे साथ, बरनावे चुन छुट्टी है कोहे ना संगी साथ। सचो सचा आखिए सचे सचा थान, जिनी सचा मनिया तिन मन सच ध्यान। मन मुख सूचे जानिए गुरमुख जिना ज्ञान, सतगुर अगे अरदास कर। साजन दे मिलाए साजन मिलाए सुख पाया, जमदूत मोए बिख खाए। नावे अंदर हों वसा नाओ वसे मने आए, बाज गुरु गुबार है बिन सबदे बूझ न पाए। गुरमती प्रगास होए सच रहे लिवलाए, तिथे काल न संच रहे ज्योति ज्योत समाए। तू है साजन तू सुजान तू आपे मिलन हार, गुर सबदी सलाई अंत न पारावार। तिथे काल न अपड़े जिथे गुर का सबदे अपार, हुक्मी सबे उपजे हुक्मी कार कुमाए, हुक्मी काले वास हुक्मी सा समाए। नानक ज्योत सुभावे सोथिए ना जनता वस किश नाहे। श्री राग महला पहला।

बिन अब शब्द न मांजिए साचे ते सच होए मुंदे गुणहीनी सुख केहे फिर रलिया रस मानसी साच शब्द सुख नेरा फिर परदेसी जे थी है धन वाडी चोरे ज्यों जल थोड़े माछली करण पलाव करे फिर भावे सुख पाइए जाको नदर करे फिर सोलाही अपना सखी सुहेली नाल तन सोहे मन मोहया रती रंग निहाल शब्द सवारी सोहनी फिर रावे गुण नाल कामन कामन आवी खोटी अवगण यार ना सुख पीए सहोरे झूठ जली विकार आवन वंजन डाखड़ो छोड़ी कंत विसार फिर की नार सुहावनी मुती सो केत साध फिर के कामने आवई बोले फादल बाद दर कर ढोई ना लै छुट्टी दूजे साध पंडित वाचे पोथियां ना बूझे विचार अनको मती दे चले माया का वपार कथनी झूठी जग पवे कहनी शब्द सुसार केते पंडित जोध की वेदां करे विचार वाद विरोध सलाने वादे आवन जान बिन गुर कामना छुटसी कहे सुन आख वखाण सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं भावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा ना विछोड़ा हुए श्री राग महला पहला जाप तब संयम साधिए तीर्थ कीचे वास पुन दान चंगे आई आ बिन साचे क्या तास जेहा राधे तेहा लुणे बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुण दासी सुख होए अवगुण त्याग समाइए गुरमत पूरा सोए रहा बिन राशी वपारिये तके कुंडा चार मूल न बुझे अपना वस्त रही घर बार बिन वखर दुखे अगला कूड़ मुठी कूड़े आर लहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लहे घर अपने चले कारज सार वन जा रहा स्यों वणजकार गुरमुख ब्रह्म विचार संतां संगत पाईए जे मेले मिलनहार मिलिया मिलिया होए ना विछड़े जैसे अंतर ज्योति अपार सचे आसन सच रहे सचे प्रेम प्यार जिनी आप छाणिया घर मह मैल सुथाए सचे से तीरतिया सचो पले पाए त्रै भवन सो प्रभ जानिए साचो साचे नाए सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग महली महल बुलाइए सो पिर रावे रंग सच सुहागण सा पली पिर मोही गुण सांग भूली भूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन मह भूली जे फिरा बिन गुर बूझ न पाओ नावो भूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पताओ चले जागर होए राजन जाने अपना दर घर ठाकना होए नानके को

क्यों छूटै बिन प्यार। गुरमुख अंतर रव रिया बगसे भगत भंडार रा। रे मन ऐसी अर स्यों प्रीत कर, जैसी मछली नीर ज्यों अदको तिखा सुख कणो। ज्यों अदको त्यों सुख कणो, मन तन सांत शरीर। बिन जल घड़ी न जीवई, प्रभ जाने अब पीर। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर, जैसी चात्रक में सर पर।

कीमत कहर ना जाए। जित तन नाम न पावई तित तन होमे वाद, गुरबिन ज्ञान न पाई है बिखिया दूजा साध। बिन गुण कामन आवी माया फीका साध, आसा अंदर जमिया आसा रस कस खाए, आसा बंद चलाई है मोहे मोह चोटा खाए। अवगन बद्धा मारिये छूटे गुरमत नाए, सर्वे थाई एक तू ज्यों भावे त्यों राख। सत गुरमत साचा मन वसे नाम भलो पात साख,

सुपनाय जागलो है अगन मरे जल पाइये ज्यों बारक दूधे माए बिन जल कमल सोनाथिये बिन जल मीन मराए नानक गुरमुख रस मिले जीवा हर गुण गाए श्री राग महला

सब जग काजल कोठड़ी तन मन देह सुआय गुरु राखे सिंदर मलाय शब्द निवारी पाए नानक तरिये सच नाम सिरसा पातशाह मैं हर नाम ना विसरे हर नाम रतन विसाह मन मुख भौजल पच मुए गुरमुख तरे।